0: रिपोर्ट कर चुके आशा सती राहुल रवि रिपोर्ट कर चुके इधो रिपोर्ट कर चुके अम्मा रिपोर्ट कर चुके इधो ये रिपोर्ट कर चुके
1: राजू
0: रिपोर्ट कर चुके
1: राजू अम्मा राजू स्कूल पर எழுந்திரு எழுந்திரு டீச்சர் கோச்சுவாங்க எழுந்திரு ஸ்கூலுக்கு போகணும் எழுந்திரு